वार्षिक नवीकरण र वन पैदावार माग निवेदन 2083 भाद्र 15 गते भित्र कार्यालय समयमा उपस्थित भई निवेदन दिनुहुन सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अध्यक्ष एवं श्री नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोट 6, 7 र 9 परिवार नवलपुर